0: मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
1: दिव्य राज्य के अड़ू मैं रिकॉर्डिंग हिंदू नागट फर्स्ट मिनट अड़ सुमति गेंदवणी दिव्य राज्य के अड़ू
2: आईकिया प्रेजेंट्स
3: बहादुर है ना

0: Mamma, badu haveje.
1: Tarifla, Sonia gata buni. Mamma ibeje mege muluwa.
0: Papa, gadi jehaniye.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school na.
4: तुम ही नहीं तो कहा था कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस्मत से भी
1: मामा फोन एक का हाँ मादमार यह तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैसे फोन का डोंटा
5: कोको Don't take a make a decal and no levene. This only a gata.
6: Eheni Gulunta Badahikurafa then, Emme Gatugava Guluntaka, Emme Furatama is Kandema.